भाई जोगा सिंध करना आवाज़ पई सत पौड़ी तू पै ऐसा किता पिछे मुड़ पे मना कोई तेन वेखदा पे वापस आ गई। थोड़ी देरी के बाद प्यारी सत्संग भाई जोगा से फिर आंदे फिर पौड़ी से पैर रखते हैं फिर कन्ना।

अजे भी कोई वेचना पे है। मैं तो समझिया कि हूं कोई नहीं वेचना और अजे भी कोई टक रही है मना जरा खैर। तीसरी वेरी भाई जोगा सिंह तेरे फिर आंदे फिर कन्ना आवाज केड़ी

भाई जोगा सिंह ने कोई उत्तर नहीं दिता। तीसरी मेरी पहरेदार ने कहा भाई बोलता क्यों नहीं, तू कौन है, तू किधरे कलगिया वाले का सिक्का नहीं, आखो सी भाई तेरी शक्ल वाल वेखे मैनू गुरु याद आंदा है पर तेरी करतूत वाल वेखे मालूम होंदा है तू कोई शैतान है, आखो सी भाई। भाई जोगा सिंह ने नजर नीवी कर दी, पहरेदार ने कहा तेरे चेहरे दे उत्ते गुरु की मोहर लगी हुई है, फिर कलगिया वाले का सिख होके तू कितने आ गया। भाई जोगा सिंह का नहीं बोलिया, हम पहरेदार मुखातों के कहना है कि

उपमा महा कलगी दर बादशाह केंद्र ने अकाल पुरख तू राजयां दा राजा तू सूरजां दा सूरज तू देवतियां दा देवता तेरी उपमा बड़ी महान है।

ऐसी उड़ारी मारी कि मानो दुनिया पलट गई। एक बड़ा ऊंचा पहाड़ है, चार चुफेरे बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। एक छोटा जिया पानी दा तल है, कुछ महात्मा बैठे ने कीर्तन शुरू होया। एक बड़ा ही तेजस्वी पुरुष इना सारिया दे विचकार बैठा है। कीर्तन ऐसा शुरू होया, उस कीर्तन दे विच सारे गवाच गए ने। सुरत ने उड़ारी मारी एक अनुभव नगर जा पहुंचे। ऐसा नगर जिदे बड़े बड़े ऊंचे मकान ने, बड़े बड़े वड्डे महल बने हुए ने, पर ओ महल इट्टां गारे दे ने, हीरे जवाहरातां दे नालों भी सूक्ष्म शहद बने हुए ने। उस शहर नूं बेगम पुरा भी कहंदे ने, जिथे गम कोई नहीं। तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी इस शहर के अंदर दाखिल होए हां। इस शहर बारे धन गुरु अर्जन साहब अपने शब्द

बड़े बड़े वड्डे महल ने पर इना महलां दे विच रहिंदा कौन है सिर्फ उस परमेश्वर दे प्यारे रहिंदे ने इना महलां दे विच।

दरवाजा खुलिया तेजस्वी पुरुष दे नाल असी भी महल दे विच दाखल होए हैं। कुछ आत्मक मंडलां वाले लोग

0: ज्यों त्यों प्रभाव को समझायो इम कह के लोक पठायो
1: मन नहीं मन रहा पर अकाल पुरख नहीं समझाया ता दुष्ट दमन जी कहंदे नहीं संसार विच अंधेरा बड़ा है अज्ञान दा बचन कीता ऐ प्यारे मैं तेरे विच चानना बन के रहांगा जिथे तू जाएगा अंधेरा दूर भज जाएगा ते नाले मैं तेनू अपना पुत्र बना के संस

दुष्ट दमन जी उस बैबान विच बैठे ने, वो बैबान वापस इस अनुभव नगर बेगमपुरा शहर तो तुरे आ, जिन्हों आपा सचखंड भी कहने, जिथों तुरे आ सी हेमकुंट नाम दे पर्वत दे असी वापस आए, इथे आराम कीता, इथों ए बेबान तुरे आ किथे जा पहुंचे आ, गुरु तेग बहादुर साहब दे महल, माता गुजरी जी दे दीवान खाने, अमृत वेले आत्मक मंडलां वाले जीव स्वागत वास्ते पहला ही हाजिर सन, आरती उतारी जा रही, आनंद मंगल पढ़े जा रहे ने, आत्मक मंडलां वाले खुश हो रहे ने, अचानक प्रकाश होया, हर पासे बनस्पति खिड़ गई, मानो अज दुनिया दा भार हरण वास्ते एक होर जोत प्रगट हो रही है। कुछ घड़िया बाद हर पासे खबर फैल गई कि माता गुजरी जी के ग्रह एक सुंदर बालक ने जन्म लिया, ते कलगीधर पातशाह आप लिखते ने कि साडा प्रकाश पटना साहब की धरती से होया, मुर पित पूर्व

हेमकुंड पर्वत जिथे आज हजारा संगता दर्शन करने वास्ते जांदियां ने, सचमुच मन सच्चा प्यार सच्चा ते कलगीधर पातशाह फिर आप लैण वास्ते अगू आंदा है, अपनी गल दे नाल लगा लैंदा है, अपने चरणा दे विच जगह दे दिंदा है। आओ भाई उस दुष्ट दमन दे तपो स्थान दे आपां भी दर्शन करिए, कीर्तन करिए सुनिए, हो सकता है कीर्तन सुनदे हैं साड़ी भी सुरत उडारी मारे ते उस शहर दे विच सानू भी जगह मिल जावे, साड़ा आया सफला हो जावे।

अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध ग्रह सोहिन चंदन सुगंध

गुरु जी दर ते बैठे अरदास करनी है। असी कलयुगी जीव हां, हर श्वास बुलन हार हां। हे निरंकार जेड़ी भी गल करदे हां ना, उस नाल कूड़ दी लब लगी होंदी है, इसलिए असी गुनाहगार हां। मोहे निर्गुण सब गुण तेरे, तेरी बख्शिश होवे रहमत होवे ता इन्या इना पंजां तो छुटकारा मिल सकदा है, पंजां ते जित पाई जा सकदी है। ये पंज कौन हन जो इस गरीब दे शुभ कर्मां नूं शुभ कम्मां तो रोकदे हन, शुभ कम्मां नूं नष्ट कर देंदे हन। ओ हन काम क्रोध लोभ मोह अहं।

के दूत नाए तेरे छड़ जाए, पूर्ण गुरु दी पहुंच लोक परलोक विच है। जिवें शहनशाह मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी अकाल तख्त साहिब दीवान विखे सशोभित हन, आओ बनाओ बिरती दियां अखां, करो उस पवित्र अस्थान दे दर्शन जिथों दी चरण धूड़ी ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवते बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अवतार जिथों दी चरण धूड़ी नू लोचदे।

सत्संग जी गुरु रामदास पातशाह कल्याण मोहल्ला चौथा प्रभु की जय कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे और ये जो है राग आप श्रवण कर रहे हो ये हमीर कल्याण है। गुरु पातशाह गुरु रामदास महाराज और जो ये रीत है बड़ी पुरातन रीत है पांच साल दी बराबर दी सवारी है और आज छोटे छोटे बच्चे सामने बैठे हैं मैं कह जरा इन्होंने भी हैरान करिए आज तो गुर दे दे के क्योंकि इस तरह ही बच्चे सीखते हैं उत्साह वधदा है गुण गाण नाल ही रब नाल